गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर जी के दर्शन को बल जाऊं, जाप जाप जीवा सतगुर नाऊं।

0: आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सो एका वार
1: कर विखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार
0: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: बोला खो लाखो वे लख वीस
0: लख लगे।

0: भक्त बसे के लो करे आनंद सच्चा मन सोए।
1: सच खंड बसे निरंकार कर कर विखे नदर निहाल।
0: जिथे खंड मंडल पर पांड जे को कथे ता अंत न अंत।
1: जिथे लो लो आकार जब जब हुकुम तबे तब कार।
0: विखे विकसे कर विचार नान कथना करड़ा सार।
1: जद बहारा तीरज सुनियार हरण मत वेद अतियार।
0: पौखला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत टाल। करिए शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम।

होए सो भला, प्रभु कै सिमरन सो फल फला। से सिमरे जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागू पाए।

प्रभु कै सिमरन निश्चल आसना, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासना, प्रभु कै सिमरन अनाथ चुनकार, सुख प्रभु सिमरन।

मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या में ममता माया मिथ्या राज उबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती स्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आप सुप्रकृत गुमान हस्तिर भगत सा

कमन प्रति ते ठाकुर के सेवक निर्मरी ते ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम करं सेवक को प्रबल सेवक की राखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सासा समारे अपने जन का परदा डाके अपने सेवक की सार पर रखे अपने दास को देव डाये अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेव की आपद राखे ता की कदम कोई न लाखे प्रभु के सेव को कौन पहुंचे प्रभु के सेव को उचे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस बगड़ाए निकी कीरी में कर राखे पसम करे लश्कर को लाखे जिसका शासन करते आप ता को राख दे कर हाथ मान जतन करत वो पात तिसके करत बिरते जात मारन राखे अवरण को सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राण जब नानक परवड़ खुड़ानी बारंबार बार पव जपिए पी अमृते मन तंत्र पे नाम रतन जिन गुरु को पाया तो इसको जरूर नहीं दिष्टाए नाम धन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम कसंग नाम राजू जंत्र ने मन धन नाम में नाम समाने उठत बैठ सौत नाम कहो नानक जन के सदकाम बोलो जह जे बदन दाल प्रभु ने जन की नींदाल करे भक्त आत्म के चाय प्रभु ने सो रह समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने तिसकी मैं मैं कौन बखाना तिसका गुण कहक न जानू आठ पर पूर्व सहजूर है कौन अंग से जन पूरे मन मेरे तिन की ओरले मन तन अपना तिन जान दे जिन जन अपनो प्रभु पुछाता सुजन सर्व तो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाव मिटावे और सियाण सगले शाण तिस जन की उस सेवा ला गया उन जन हो तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पैरा सलोक सत पुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाव तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गाव अस्पति सतगुर सिख की करे बरपाल सेवको गुरु सादया सिखी गुरमत मले रे गुरु वचन हर नाम चरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुरु का सिख उगार ते हाटे सतगुर सिख को नाम दान दे गुरु का सिख गुड़ भागी है सतगुर सिख कल पसवारे नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आगे मन में सह आपस को कर कछुन जनावे हर हर नाम दे सत्यावे मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा कर तो है ने काम ही तिसको उत्प्राप स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु के मत ले बीस विश्व है गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गा जाने सो सतगुरु जिस हृदय हरनावन कुबार गुरु को बल जाओ सर्वण धन जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार एक अपने खिश परम सह सियाण पलायन जाई नानक ऐसा गुरु भागी पाई सफल दर्शन पेखत पुणीत परसद चनगत निर्मरीत भिड़ संग्राम गुण रवे पार पुण की दर गए गवे सुनकर बदन करने अखाने मन संतोख आत्म त्यान पूरा गुरु रखे जा का मंत्र अमर दिस बेक संत गुण बेअंत किमित नहीं पाए नानक दिस पाए तिले मिलाए जेह बाय खुश सतन एक सत पुरख पूर्ण विवेक काहूं बोल न पहुंचत प्राणी एकम गुजर प्राण निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाय ता की कीमत किने न पाए अनक भक्त बंधन इत करे चरण कौन हृदय समरा सत बलहारी सत गुरु अपने नानक जिस पर साध सब रोज अपने ये हर सुभावे जन को अमृत वे अमृत सो इस पुरुखा नायक देव नाथ जाके मन भक्त गुणता से आठ पैर हर का नाम ले सच उदय सो को दे मुंह माया के संग न ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तैते नासे तब तुम्हारे ठंड वरता इंद भया दू नाठे भाई जन मरण के मिटे देश साधु के पूर्ण उपदेश पहुंचो का निर्भो वसे सकल मंत गए मंत खै नसे जिसका साधन कृपा तारी सा संग जब नाम मुरारी तित पा चुके भ्रम कवन सुन नानक हर हर दस सरवण निर्गुण आप सरगुण भी हो कला धार जिन सगली मोई अपने तर प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोय सरण निरंतर को सोए ओत बोध रव्या रूप रंग भय प्रगा साध के संग रच रचना अपनी गल धारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाल बिन भजन बिखिया सगली सार हर हर नाम को मामना नानक तन सार स्वय संत जन मिल करो विचार एक सिमर नाम धारो रूपा स्वामी विसारो चरण कमल मार तार करण करण सुप्रभ समरथ दृढ़ कर कहो नाम हर वाते तन संचो भगवान संत ना का निर्मल मन ते कासरा कुण माए सर्व रोग नानक मिल जाए जिस तन को चार कुण दृढ़ता वै सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुकुण तबाचा मी सो सुख साधु संप्री जिस सुबा को करे भले करनी सासु जर की शरणी अनुगोपावी रोग न जाए रोग मटे हर खुदलाए सर्वन धान में हर नाम धान जप नान दर गई प्रवान मन प्रो दो हर के नाज दादी साहु ते आवे ठाए ता को विघ्न लागे कोय जाकर देव से हर सोए
कलदाति ठांडा हर नाओ सिमर समस्त दास उपाओ पवन से पूर्ण व्यास भगत पाया तम प्रगात कर जाय सेवनासी को नानी काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म रे सोका चोका चावा गुण मुटे प्रभु से व्याप्त अक्षण गुरुदेव रतन जन्म का हो उदार हर हर सिमर प्राण धार अनुगपालन सुटन हारे सिमर साध वे विचारे हर की भगत गुरु मन लाए मन पंच नाम खुल पाए संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सो तुम इत ब्रम्बर बनता इनते तुम कौन सुना इनते कहो तुम कौन सुनात राज रंग माय विस्तार इनते कहो कौन चुटकारा सस्ती रथ सुवारी झूठा डम चुटपा सारी जिन दिए तिस बुझ न बिगाना नाम सार नान को स्थान गुर की मातु ले आने भगत बिनो बोडू बे जाने हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल तुम्हारो चे चरण कुमरा खून माए जन्म जन्म के गुरु जाए आप जपो अवर नाम जपाओ सुनत गैर कह पाओ सार बुध हर गुण आओ सहसवाय नान गुण गाओ गुण गाओ तिर उतर समैल विहजा हम विफैल हो चंद विस सुकुनाल सास ग्रह सार नाम समाल छाड़ सियाणु सगली मन सास पावे सच धना हर पुंजी संस करो बिहारियाँ सुख दर कह जयकार सरण अंतरे को दय कहो नानु जा के मसगले एको जापे को सला एक सिमरे कुमण आहे एक सके गुण गावण अंत मंतन जापे गुवान भगवान दे कोई के कर पूर्ण पूर प्रव्या अनुकृष्ण एक देव एक रात प्राचत गए मंतन अंतरे गुरु राता गुरु पर साध नानकी गजाता सलोक फिर प्रव आया पर या तो शरण आय नानकी प्रवेणती अपनी भगती लाश्वज जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देव हर नाम साधना की मंगो तूर पार ब्रह्म सदा स पार ब्रह्म सरदा पोर सदा सदा प्रभु के गुण गा सास सास प्रभु तुम दया चरण कमल सोला गय प्रीत भगत करूँ प्रभु की नितनी ते कोट एको धार नानक मंगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्ट महा सुख हर स्वभाव विरला को जिन चा कैसे जंत्र ने पूर्ण पुरुख ने डोला ने सुब्र भरे प्रेम रस रंग जय चाव साध के संग परे शरण सब त्याग अंतर पर का संदन विलाग बड़ भागी जपे प्रभ सोए नानक नाम हृदय सुखोए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मतले जनको प्रभ हो दयाल सेवक की नू सदा निहाल बंधन काट मुख जन भय जन मरण दुख परम गए छपनी सरदा सा पूरी रव रहा सत्संग हजूरी जिसका साधन लिया मिलाए नानक पति नाम समाए सो कुछ श्रेय घाल न पाने सो कुछ श्रेय किया जाने सो कुछ ने सब कुछ दिया सो कुछ रे जीवन जिया सो कुछ जगन में राखे गुरु प्रसाद को हिला लाखे सो कुछ श्रेय बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा काटे गुरु पूरे ताते बुझाए आ प्रभु अपना नानक दंत है साजन संत गुरु एक आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख भाव आप जपो हर नाम जपाओ भगत पाए तिर संसार बिन भक्ति जनो शेषार सर्व कल्याण सुख निज नाम बुढ़ जात पाए विश्राम सकल दुख अवनाश नानक नाम जपो गुणदास उपजे प्रीत प्रेम राचा मंत्र अंतरे स्वभाव नेत्र वेग दर सुख है मन विकस सा चरण तोय भगत जना के मंत्र नाग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर्मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कही न जाए नानक रह सर्व समाय प्रभ अक्षण दीन दयाल भक्त चल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कृपा करत प्रपाल आद प्रभु कारण करतार भगत जना के प्राण धार जो जित पै सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीत जा नानक तुम निशन पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गायन खराज भोगड़े आई हर के नाम की कथा मन पाए बो चब बो रसना जब ती हरा रेख बो भोजन सा का प्रसंगीत रसन जब ती हरा नीत भली सुकरणी शोभा तन मंदिर दिवस प्रणु गुमन सा संग प्रभु देवास सर्व सुख नानक प्रगा सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन की नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार कृष्ण दृष्टिता पाप तब कहते हो ता जब तारी अपन सुन समाप्त भैर लोक के संकमा जब इसका वर्ण से न जाव तर्क शोक होक से व्याप जब अपने आप पार ब्रह्म तम हो कांक सोत परम अपन खेलिया वर्ती जा नानी करण हरण दूजा जा हो कर प्रभु केवल दणिता बंद मुक्त को किसको गणी जावे कर गुम पारता नरक सुरु को कोण होता अब जा नरकुम प्रभु सह स्वाय ताव शिव शक्त कहो पिंठाए जावे आप अपनी जो तर है ताव कम निरुल कम कदर रे अपने चल दाव करने हार नानक ठाकर कम बार अविनाश से सुख अपने आसने ता जन्म मरण को का अविनाशन पूर्ण कर जब पूर्ण कर तब प्रभु सोए तब जमकी त्रास कहो किसोए जब अवगत गोचर प्रवे का तब चित्रगुप्त रेखा जब नाथ निरंजन गोचर का देता कौन छुटे कुण बंधन बाधे आपन आप ही चर जा नानक अपन उपापी वर जा
जय निर्मल पुरुष भगवत होता तय बिन मैल कहो कहत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छित लगत कहो कि जय जो स्वरूपी जो संग समाव तय किसे भूख त्रिवतावे करण करावन करणे हार नानक करते का न समार जब अपनी शोभा अपन संगुणाए तब कौन भाई बा मित्र सुत भाई ज सर्व कला पे प्रवीण तब भेद देव कहाँ को चेन जब अपने आप अवतार है तो सगन सगन काम विचार अपन ऊच अपने अपने रात है कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विषम विषम रह विषमाद नानक अपनी का जन हुआ जय चल छेद भे समाय अंक से भी आप तुम आया आपस को आप देश तय गुण का नहीं प्रवेश जय एक एक भगवंता तय कौन अचंत कुशला के चिंता जय अपने आप आप थे यार तय कौन कथे कौन सुनने हारा बो बेन तू ते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय प्रचय प्रपंच कार तय गुण मैं किन्नो विस्तार पाप हूं तय पई का को नर को सुर्ग मुझाओ त्याल जल मैं जंजाल हमें मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान प्रकार के वखे आने आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचा तो नानक एक जय भगत भगत आप जय पसरे पासा संत प्रताप दो पा कह आपे तनि उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौते ग्रहण चो जय आपे रस भग निर्जोग जिस भाव तुझे अपन ना लावे जिस भाव तुझे खेल खिलावे बेशुमार थाकन ते तो लै ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानकी को बसरिया दूजा कह दृष्टा रसपति आप कथे आप सुने हार आपे का विस्तार जाते भावते से सुभाए अपने भाणी लै समाए तुम ते पिने जोए आपन सो सब जगत फरोए जा को प्रभु जी आप बुझाए सतनाम सोई न पाए सो समदर्शी तत् कवेता नानक सत श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता के हा दीन दयाल नाथ को राज राखे दिस कोई न मारे सो मोह मन विस्तारे तिस तजर कहां को जाए सब श्री निरंजन राय जे के जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो साध गुणी दान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर है दयाल सब उपल कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रो ब्या प्रत पाले जीन भोपा जो जो रचो सुत से दयात जिस भाव तिले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मंत्र विश्वास कर माने करण हर नानक जाने जन लागा हर के नाय तिसकी आसना बैठी जाए सेवको सेव अपने आए कुंभुज प्रमोद पाए स्थे उपर नए विचार जाके मन से निंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंधन पुजे गुरु के पैर लोक सुखे परलोक सोए ले नानक हर कोई आपे मेले सत्संग मिल करो आनंद गुण गाओ प्रभु परमानंद राम नाम तत् करो विचार दृढ़ उदय का करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तृण गए सुहाओ आठ पैर पर भेखो नेरा मिटे ज्ञान बिन सिंह देरा सुन पदे सिर दे वसाओ मन छे नान खुल पाओ हल पल दलो सुहा राम नाम त्रोतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिसमें सिर सच प्रख्या मंता नाम सुभ दिवलाए दुख दर्द मन ते हो जाए सच व्यापार करो व्यापार इधर कह नि फेखे तुम्हारी एक टेक रखो मन माए नानक बोर नया वह जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे रखन हार ते आए निरपुज पे सकल पौ मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस पर राखे तिह नाई दुख नाम जद मन हो सोख चिंता मिजाज मिटे अहंकार तिह जन गए तिह जन को कोई न पहुंच रहा सिर को ठाडा गुरसूरा नानक ता के कारज पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन भेख दृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हारू धन सेवा से पुराण अंतर जामी प्रकुर दान जिस मन बसे सोनिया।